मुस्कि मुस्क गंदारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनीके बचन समारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारे विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संक उतारे सतगुरु मिलिया परबद पाया हाउ सतगुरु के बलहारी पाखांडी पाखांडी कर परमे लो पखंड जागे बुरियारी हलत पलत दुखदाई हो वह जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे लो दिन से आल जाल समाले बिखमाया के बिस्थारे आई रैन पया सुपनांतर बिख सुपने भी दुख सारे कलड़ खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवाड़े साग तनारे सब पूख पकाने दारे ठांडे जम जंदारे मनमुख करजे चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज से मंगिए कारे सेवक पगलग बारे जगन्नाथ सब जंतर उपाय नक खीनी सब नथ हारे नानक प्रभ खिचै तिम चलिया ज्यो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हारे अमृतसर नवारे सतगुर ज्ञान मंजन है नीको मिल कलमल पाप उतारे रहो संगत का गुण बहुत अधिकाई पर सूबा गण को उधारे परसन परस पे कुबजा को लैब कंठ सुधारे जामल प्रीत पुतरे परते किनी कारे नारायण बुलारे मेरे ठाकर के मन पाए पावनी जम कंकर मार बदारे मन मुक्कथे कथ लोक सुनावे जो बोले सोना बिचारे सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हरे राम नाम निस्तारे जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना बेसमारे जब कर मंदर आग लगाने कड़ कूप कड़े पनहारे साक्त स्यों मन मेल ना ज करियो जिन हर हर नाम बिसारे साक्त बचन विश्वा ज्यो डसिया तज साकत परे परारे लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारी गुर कै बचन सत सत कर माने मेरे ठाकर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हरे हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे जैसा रंग दे सो होवे क्या नानक जंत विचारे नट महला चौथा राम गोरे सरन प्रभु रखवारे जो कुंचर तंदुआ पकड़ चलायो कर ऊपर कट निस्तारे रहो प्रभ के सेवके बहुत अत नीके मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावे जन के पैस सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरख एक नदरे आवे सब एका नदर निहारे हर पर ठाकरे रव्या सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीड़े कारे अंतरवास बहुत मुस्काई परम पूला मृग संगारे बन बन टूंड टूंड फिर थाकी गुरपूरे कर निस्तारे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माना प्रतख गुरु नस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरया मन बीजिया खवारे जो जन चंद्रहास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लू की जारे प्रभ को जन अंतर दलोचे प्रभ जन कह सास निहारे कृपा कृपा करे भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप प्रभ ठाकुर प्रयापे शिष्ट सवारे जन नानके आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लिहो उबारे जो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारी राहो कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगे उदान प्यारे सतगुरु की नित सरता लागे मोह को हारे गुरमेल सवारे
ਸਾਖਤ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਮਥੀਆ ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਝੋਲ ਚਲਾਰੀ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਕਾਢੇ ਮਾਖਣ ਕੇ ਗੁਟਕਾਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਾਇਆ ਮੰਜਨ ਕੀਆ ਨਿਤ ਮਲ ਮਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਬਚਨ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਚੱਲ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

करतार मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं।

राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता, श्री हस्त हुज जब पहे दयालु।

संबद सतरह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधार पूल परी लहो लेहो सुधार दोहरा नेत्र तुंके चरण तार सतद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विबाद

गुरु एक ओहकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती

0: इतनी हाजरी प्रवान करनी कुलचुक की खेमा सवा हूं आप जी सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी श्री दमदमा साहब वाले लड़ीवार कथा गुरमत विचारा द्वारा निहाल करे जी वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

sonho somado, agado, sada sangat sa parampara, abgat alak apihiv, agamite aparampara, sat rup, sat naam, सत गुरु नान दियो जपाया धर्म साल करतारपुर साध संगत सच फंड वसाया वाहे गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु

जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करहे जयकारा राम।

नमः, सतगुराय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पामो, काल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरों जास विश्वंबर एकै।

के प्रभसात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना भाई मन उम्हा नाम तेरा संग सहाय। जय महाभयान दूत जम दलाय तय केवल नाम संग तेरा चल्ला। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस तरह। अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगावे। जे मार्ग ए जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए। छूटत नहीं गोड लगबाही नाम जपत है पार पराही। अनक बिघन जाए संगारे हर का नाम तत्कार उदार है। अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पाव है विश्राम। हाँ मेला मन कबूना तो वह हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध के संग। जे मार के गने जाहे ना गोसा हर का नाम ऊहा संग दोसा। जे पैठे महान दुख बारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सिंजानू हर का नाम ते नाल बशानू। जय महाभयान तप्त भाव काम ते हर के नाम की तुम प्रशाम। जहां त्रिखा मत तुझ आकर खै ते नानक हर अमृत बरखा।

नौखण पृथ्वी फिरा चिर जीवा महा उदास पी सर थी वह अग्न माय होमत प्राण कनक सब है भरपूम दान न्यवली कर्म कर बवासन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तापी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर काश नाहे नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे।

वष्टपदे जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तुष ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तल्लामे तुषको सिमृत परम गत पावे जय प्रसाद वसे सुख मंदर तिसे ते आए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ते अमन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सो वैजय मनाठ पहर ताका जस गावी जाय जय प्रसाद तुसभ को माने मुख ताको जस रसन बखान जय प्रसाद तेरु रहता।

दास कर चले जयप्रसाद संपूर्ण फल है जयप्रसाद परमगत पावे जयप्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागो हो गुरप्रसाद नानक मन जागो जयप्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मोल ना मनो विसार जयप्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ता को जाप जयप्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ता शिवराज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाऊ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रकाश प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए

प्रसाद साधक संग सुनो हर नामो सत्संग हर के गुण गाओ साधक संग नामंते बिसरा सत्संग सर पर निस्तरा साधक संग लगे परा मीठा साधु कै संग घट घट डीठा सत्संग भया गयाकारी सत्संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साध की महिमा वेदना जानै जेता सुने तेता बखियाना साधु की उपमा तय गुण तय दूर साधु की उपमा रही प्रभुर साधु

गर्भगले अष्टपति जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाती उपस्वान, जो जाने मैं जो बनवंत सो हविष्टा का जनता उसको कर्मंत कहावे, जन्म मरय बहु जोन प्रभावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खां दा अज्ञान, कर कृपा सके हृदय गरीबी बसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे, तरवंता कर गर्भावे तिरन समान का संग ना जाए, बहु लश्कर मानुख पर करयास पर भीतर ताका हो विनाश, सबते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए बसवंत, किस न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी, गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे प्रवान, कोट कर्म करे हों तारे शर्म पावे सगरे बिर थारे, अनंग तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार, अनंग जतन कर आत्म नहीं द्रवय हर दरगे को कैसे गवै, आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए तब सो सुख नाही कोए, जबे जाने मैं किस करता तबलग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत तबलग ने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए तबलग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे, सहज घटे लग उड़ता वे दर्द न आवे माया पाशे भावे, अनक भोग विख्या के घर न द्रप तावे, कब कब मर बिना संतोख नहीं गौ राजे, सुवन मनोरथ वृथे सब गाजे, नाम रंग सर्व सुख है बट बाकी से प्राप्त हुए करण कराव ने आपे आप, सदा सदा नान कर जाप करण करावन करण जोग, करण करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाप, करण करावन करने हास के याद कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हो आपे आप सोए, जो कुछ किनो सपने रंग सबते दूर है सबों के संग, बुझा देखे करे विवेक आप एक आप अनेक मरे न मिनसे आवे न जाए, नानक सती रह समाए, आप उपदेशा समझे आप आपे रजा सब का साथ, आप की रूम आप विस्तार सब कुछ सुखाव करने हार, उसते पिन कह हो किशोए थान थरंदर एक सपने चलता आप करने हार, कौता करे रंग आपार मन में आप नबरे माहे, नानक की मत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गना मखियानी, सच सच ससब कीना कोट मदे गने बरले चीना, भला भला भला तेरा रूपा सुंदर अपार अनुप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घटगण सुनी सरमन मखियानी, पवित्र पवित्र पवित्र प्रीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक, संत सरण जो जन पर सो जन उदरणहार, संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार अष्टपदी, संत के दुख ने आर जा कटे संत के दुख ने जमते नहीं छुटा, संत के दुख ने सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख ने मत होए मलीन संत के दुख ने सुभ पाते हीर, संत के हाथे को रखे ना कोए संत के दुख ने थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जय करे नानक संत संग निंदक भी तरा, संत का दुखन दे मुख पवाए संतन का दुखन काग जो लवाए, संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रगत जोन किरमाए, संतन का दुखन तृष्णा में चले संत का दुखन सब को शल, संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच नी जाए, संत दुखी का था उनको नाहे नान संत भावे था वे भिगत पाहे, संत का निंदक मात थाई संत का निंदक हिंट करना पाई, संत का निंदक मात हारा संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखी आरतीन, संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक सदा बिजो, संत के निंदा दुख में दुख नानक संत भावित उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरा संत की दुख ना सुख ते ठरा, संत के दुखी को ना ही ठाऊ नानक संत भावे थलाए मिलाए, संत का दुखी अज बीते को टूटे संत का दुखी कहते कहते काज ना पहुंचा, संत के दुखी के ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंदर दे थोथा जो सास बिना मृत्यु की लोथा, संत के दुखी की जड़ की शनाहे अपन भी जापे ही खाए, संत के दुखी को अवर न राखन हार नान संत भावे थलाए उबार, संत का दुखी एवं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भुखा नहीं राजा जो पाप की इंद्र ने थरापा, संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माए दुहेला, संत का दुखी धर्म से रह संत का दुखी सद मिथ्या कहत, कीर्तनंद का तुरी पाया नानक जोत भावे सोए थिया,
ਸੰਦਗਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗ ਡੁੱਬੇ ਜਾਏ, ਸੰਦਗੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਸੰਦਗਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈ ਆਏ, ਸੰਦਗਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵਾਈਏ, ਸੰਦਗੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਸੰਦਗਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਸੰਦਗਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕੋਏ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਪਿਆ ਕਿਰਤਨਾ ਮੇਟਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਸਭ ਘੜ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੇ ਧਿਆਪ ਸਾਧ ਗਿਰਾਸ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀ ਆਪਣਾ ਖੇਲ, ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਪ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ।

के एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रति, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग, सेवको पर पालनहारा सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिदया प्रभु तारे नानक, सो सेवक साथ साथ समारे, अपने जन का प्रदाता के अपने सेवक की सर्व राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि कदमित कोई ना लख है, प्रभु के सेवक का को ना बहु ऊंचा, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया, नेकी गिरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे, जिसका सास ना काट त्या बता को राख देख रहा, मानस जतन करत बहु भांत जिसके कर्तव्य बिरथे जात, मारे न राखे वरना कोए सर्व जिया का राखा सोए, काय सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु लख विडाणी, बारंग बार बार प्रभु जपिए, पी अमृते मंथन तरपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अमर नाही दृष्टाया, नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम, राजो जंदर बिदाने मंथन नामे नाम समाने, उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सतकाम, बोलो जह जे बा दिन रात प्रभने जन कीनी दात, करे भगतात हम कह चाहे प्रभने स्यों रहे है, समाये जो होबा होबा सो जाने, प्रभु ने कहा हुक्म बछाने तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण गाय कना जानो, आठ पैर प्रभ से अजूरे कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले है, मंत्र नमदान तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु बछाता, सोजन सर्व थोका दाता, तिसकी सरण सरण सुख पावे, तिसके दर्श पा मिटावे, अवर सियान में सगरी शाड, तिजन की तू सेवा लाग, आवन जानो मी तेरा नानक, तिजन के पूजो सद पैरा सरोक, सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाम हो, तिसका संग सिख उदराय, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुरु सिखी कर कराय प्रतपाल, सेवको गुरु सदा दयाल, सिखी गुर दुरमत मलहरा, गुरबचनी हर नाम चरा, सतगुरु सिखे बंधन काटे, गुरु का सिख बेकार ते हटाए, सतगुरु सिखो नाम धन दे, गुरु का सिख बड़भागी हे, सतगुरु सिखा हालत पल सवारे, नानक सतगुरु सिखो जी नाल संवार, गुर कह ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आ गया मन में सहे, आपस को काल काशना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचा सतगुरु के पास, सेवक के कार्य राज सेवा कर तो इन्हें काम प्राप स्वामी, अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले, बीस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम अनक बार, गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्मे जन जन्मे पार ब्रह्मे के आपने कश ब्रह्म सह सियान बल ना जाइये, नानक ऐसा गुरु बटभागी पाइये, सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे, सुनकर वचन कर आगा नेम संतो गातम बतियाने, पूरा गुरु खिव जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव तिस लय मिला।

जिस धन को विचार गुण उड़तावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाछे मी सो सु साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बजर की सरणी अनुभावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान मेरा नाम निधान जब नानक दुर्गे परवान मन प्रबुद्ध वर के नाय दैत तावता बैठाए ताको कि बिघन ना लागे कोए जागे हृदय बसे सोए कलता ती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पावन से पूर्ण हुए आस भगत पाया तुम बरगा तत्कर जाय बसे नासी कहो नान काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म रह सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव एवं रत्न रत्न जन्म गाओ हे उदार हर हर सिमन प्राण आधार अंग पावना छूटन हारे सिमरत सास्त भेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन मन छत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तुम ख्याल बटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इंते कहो तुम गमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इंते कहो गमन छुटकार अस अस्थी रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदी है तस बुझे नाम बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत ले आने भगत बना ब डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत दिन बल हुए तुम्हारो शीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के कर बिख जाहे आप जब अबरा नाम जपावो भगत पाए आप जब अबरा नाम जपावो सार सुंत कहत रहत गत पावो सार पू सतर को नाओ सह सुभाहे नान गुन गाओ गुन गाव त्रिवित्र समैल बिन जाए होमे बिग फैल ओए अचंद बसे सुगनाल सास ग्रा सर नाम संभाल छाट सियान सगरी बना सास संग भावे सच धना हर मुंजी संज करो व्यवहारी हां सुख दरगाह जायकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जब एको साल आहे एक सिमरे को मन आहे एक अस गए गुन गाव अनंत मंथन जाप एक भगवान देखो एक एक हर रा पूर्ण पूर्ण रहे प्रभ्याप अनंग विस्तार एक देव एक रात बरासत गए मंत्र अंतर एक पर बराता गुर प्रसाद नानक जाता सरोख फिरत फिरत प्रभ आया परया ताओ शरणाए नानक की प्रभेनती अपनी भक्ति राय अष्टपदी जाचक जन जाचक प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाऊं सा प्रभ तुम्हें त्या माऊं

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समिग्री एक सुगाठ माहे अनकरंग नाना दृष्टा है।

आप छोड़ बेनती कर हो सा संग अगन सा करत रहो हर धन के भर लियो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नर्क निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

पर में सुर प्यारा जगमग ज्योत निरंतरी जग जीवन जय जय कारा नमस्कार संसार विच आदि पुरख आदेश अधारा चार वर्ण छी दर्शना गुरमुख मार्ग सच अचारा नाम दान इसनान दृढ़ पाए भगत गुरमुख निस्तारा गुर अर्जुन सच सिरजन हारा हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुग्धनी जान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी

परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण सबत सरे।

जैसे मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुदामणी महला पंजमा। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो जे को खावे जे को पूंचा तिसका होए आधारो ए वस्त जी न जाए नितन तरख उतारो तम संसार चरण लग तरिया सब ना

प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग लापु आठो नंदन प्रथम राग पैर उवै करहे पंच राग ने संगो चरहे प्रथम पैरवी बलावले पुनिया की गावे बंगले पुन सलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारे पंचम हरखद साग सुनावे बंगालम मद माधव गावे ललत बिलावल गावे अपने अपने पात अष्ट पुत्र पैरव के गावे है गायन पात्रे द्वितीया मालका उसक अलापे संग रागने पांचो थापे गौंड करी और देव गंधारी गंधारी से होते उचारी तनासरी ए पांचो गाये माल राग कौ सक संगलाए मारू मस्त अंग में वारा परबल चर कौ सक अबारा कौ खटे उपवर आनंद गाये अष्ट माल कौ सक संगलाए पुने आयो हंडोल पंच नारे संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल ता गायन तार मिलावे ता लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाय सरसी हिरी लै पार जा संगलाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रन बिंब मंगलन सहाय सरस बाणियो आहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी का छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदियो गुजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतलियो रामा कमल कुशम चंपक के नाम गौड़ाऊ कनड़ा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल श्री राघव गावे पांचो संग बरंगन लावे बरराड़ी करनाटी तरी गवरे गावे आसा वरे ते पाछे सिंधवी आलापे श्री राग से पांचो थापे सालु सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर कष्टम मेघ राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गौंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुणी उच्चे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग सिंह पांचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबले तर नट्यो जल तारा।

देखे सुने न जानिए माया मोहे अंध जियो काची देह बिनसनी कूड़ कमावे तंद जियो नाम त्यावे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो हुक्मे जुग में आया चलना हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनु करता विसरे तिसे विछोड़ा सोग जियो आपने प्रभ वाणिया दरगह पैंदा जाए जियो ऐथे सुख मुख उजला इको नाम त्याय जियो आदि दत्ता पारवम गुरु सेवा सत पाए जियो थान थनांतर अवरिहा सर्व जिया प्रतिपाल

मत हो छिए क्यों राह पछाणे क्यों राहे जावे महल पावे अंत की मद अंदली क्यों राहे जावे महल पावे अंध की मत अंदली बिन नाम हर के कछ न सूझे अंध बूढ़ा धंधली दिन रात चानण चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पै कर बिनंती राह पादर गुर दसै मन परदेसी जे थिए सब देश पराया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया दुखी पर आया जगद सुभाया कौन जाने बिद मेरिया आवण जावण खरे डरावण तोड़ ना आवे फेरिया नाम बिहूणे ऊणे झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जे थी है सब देश पराया गुर मैली कर अपने सो भारपुर लीणा सेवक सेवा ताकरे सच शब्द पतीणा शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरय आप करता करे सोई प्रभ आप अंतर निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीणा गुर मैली कर अपने सो भारपुर लीणा कीता क्या साला है कर वेखे सोई ता की कीमत ना पवै जे लोचे कोई कीमत सो पावै आप जनावे आप भुल न भुलै जय जय कैर करे तुद पावै गुर के शब्द अमुलै हीणो नीच करो बैनंती साज न छोड़ो भाई नानक जिन कर देख्या देवै मत साई राग सोही शांत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु साध सुख सुहिलड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारै बलिहारी गुरु अपने बिट्टो जिन कारज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कहे सुनो जन पाई सुख सुहिलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सहज सुपाए गुरमत सहज नाम त्याए जिनको तोर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन मरण पव पागा अंदरो दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा किनी मेरे स्वामी तिन आन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाए जग मै राम नाम निस्तारा गुर ते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सुपाए

मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसिया सही जन निस्तर है घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गावै सहज समावै सब दे मेल मिलाए नानक सफल जन तिनकीरा जे सतगुर हर मार्ग पाए।

रावर आवे रंग राती फिर आवे रंग रातड़िए फिर कै मैल तिन पाया राम सो सहो अत निर्मल दाता जिन बिचो आप गवाया राम बिचो मोह चुकाया जा हर पाया हर कामन मन पाणी अन दिन गुण गावे नित साचे कथे अकथ कहानी जुग चारे साचा इको वरते बिन गुर किने ना पाया नानक रंग रवे रंग राती जिन हर सेती चित लाया।

हर मीठ लगाए, गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए। राग सुही महला चौथा शांत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाया अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो। हर हर नाम त्याया गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो, गुरबाणी सद मीठी लागी पाप विकार गवाया। होमे रोगया पव भागा सहजे सहज मिलाया, काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो। आंदन सुख माणे नितरलिया नानक तुर संजोगो, सत संतो कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो। सांझना कर मेल गुरबाणी गावाइया बलराम जियो, बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सुहाया। गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड भरम गवाया, होमे पीर गए सुख पाया अरोगत पय शरीरा। गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा, मन मुख विछड़ी दूर महल न पाए बल गई बलराम जियो। अंतर ममता पूर कूड़ बिहाजै कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै बिन सतगुरु मगन पाया। उजड़ पंथ भरमै गावारी खिन खिन धके खाया, आपे दया कर प्रभदाता सतगुर पुरख मिलाए। जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुपाए, आया लगन गणाए हिरदे धन उमाहिया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती वह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कराए। गुणी ज्ञानी बहमता पकाया फेरे तत् दिवाए, वर पाया पुरख गम गोचर सद नवतन बाल सिखाई। नानक कृपा करके मेले बिछड़ कदे न जाई, सुही महला चौथा हर पहलड़ी लाव प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्यावो अमृत सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराध हो सब कील बिख पाप गवाया, सहज आनंद हो अबड़ पागी मन हर हर मीठा लाया।

पाया, बलराम जियो निर्मल पाव पाया, हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्व रिहा भार पूरे, अंतर बार हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाव चलाई, अनहद शब्द बजाए, हर तीजड़ी लाव मन चाओ पिया, बैरागिया बलराम जियो, सांझना हर मेल हर पाया, बड़भागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, सांझना बड़भागी पाया, हर कथिए अकथ कहानी, हिरदे हर हर हर तनु उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लाभै, जन नानक बोले तीजी लावै, हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी ला मन सहज पिया, हर पाया बलराम जियो, गुरुख मिलिया सुभाई, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, आंदन हर लिवलाई, मन चिंदिया पर पाया स्वामी, हर नाम वजी वादाई, हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम वेगासी, जन नानक बोले चौथी।

रामीराम गुरु शब्द रवे रवरिया सुप्र मेरा स्वामी राम पर मेरा स्वामी अंतर जामी कटक रव्या सोई गुरु सच पाई है सहज समय है किस बिना वरना कोई सहज है गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभु सो दे जापे एने सलाम थियाए ए जगो दुतर मन पार ना पाई राम अंतरे हमें ममता काम करो चतुराई राम अंतर चतुराई थाय न पाई बिरता जल गवाया जब मग डुपावे चोटा खावे अंत गया पुलटाया बिना में को बेली नाई पुत कुटुंब सुत पाए नानक माया मोह पसारा आगे साथ न जाई हो पूछो।

जाने सोए पछाने जाको नर सिंधे मानक बोले बोती राई फाती माया पंदे ठाकर पानी सास बड़मती तिनी सब रगमाना नानक दर तू है ठाकर तू नानक का माना ओ वारी वंजा भोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम मिटे अदारे तजे विकारे ठाकर से मनमाना प्रभ जी पानी पये नकाणी सफल जन परवाना पई अमोली पारा तोले मुकद जुगत दर खोला ओ नानक हो निर्मो होई सो प्रभ मेरा ओला सोई मल्ला पंजवा साजन पुरख सतगुरु मेरा पूरा तिस बिना वरना जाना राम मात पिता पाए संबंध जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिस का जिया सबगणा परपूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा परपूरे ताकि शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याण सदा सदा प्रभ को बुलारे नानक सतगुर बाणा ऐसा गुरुवर भागी पाई है जित मिलिए प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किल कुतरे हर संत तूड़ी नित लापे राम हर तूड़ी ना ये प्रभु ते बौड़ जो ना ये गुरचरणी लागे परम को पागे मन चंदिया फल पाई है हर गुण नित गाये नाम चे फिर सोग नाई संताप है नानक सो प्रभु जी का डाटा पूरा जिस प्रताप है हर हरे हर गुण निधे हर संतन के वास आहे राम संचरण गुर सेवा लागे तिनी ब्रह्म पद पाए राम ब्रह्म पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारे सफल जन्म हुआ पो पागा हर पीटिया एक मरारी जिसका साथ ही मेल लिया ज्योति जो समाया नानक नाम निरंजन जपिए मेरे सागर सुख पाया

सब एक प्रभु अनेक रव्या सर्वमंडल छाया ब्रह्म है ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल तल मयल पूर्ण तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक विक्षे आप बुलाए मिलाए सूही महला पंजा अवचर नगर गोविंद गुरु का नाम जबत सुख पाया मन चे से ही फल पाए करते अवसाया रा करते अवसाया सचक पाया उठ पाए सिख विकासे गुण गावे पूर्ण परमेश्वर कार्य आया रा से आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन ए थान सोया हर मंदिर अटराने सोए जिस विच नाम विलास निवासी राम संत।

जोबन खोए पाछे पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हाओ बिरह जाली पिरह बहून कतै सुख पाए जाहोय कृपाल तब प्रभु मिलाए विदन खुही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ सा संग मेली जा फिर देखा ता मेरा अल हो बेली बाट हमारी खरी उडीणी खन्यो तिखी बहुत पीणी उस ऊपर है।

कट तहै नीत पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान काट काट मैं हर जुव सै संतन के हो पुकार को नानक ते पाज मना पोग निद उतरे पार सुख दुख जय

का बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय को नानक अब ओट हर गज जू हो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किच होते उपाय नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय संग सखा।

जय सिंह संग सिमरत संकट मिटाय, दर्श तुहारो होए। जय सिमरत संकट मिटाय, दर्श तुहारो होए। मदावनी महला पंजवां, थाल विच तीन वस्तु पेयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पेयो। जिसका सबसे आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उदारो। ए वस्त अजी नह जाई, नित

हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करै शाबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद।

साहब महाराज जी के पावन पितर हजर जी बैठी साध संगत जी सारे ही सरदार इंद्रपाल सिंह जी गंभीर जिन्हों परमेश्वर जी ने वाहगुरु जी ने जिनी उम्र दिती सी सवासा की पूंजी ने भोगद हो अकाल चलाना कर गए उन्होंने निमित उन्होंने पांच भूतक शरीर संस्कार तो उपरंत परिवार वालों संत मित्रां परिवार वालों गुरु महाराज हजूर च बैठ के उन्होंने निमित उन्होंने आत्मिक शांति रखे गए सहज पाठ संपूर्णता हुई हैं। आप जी धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पवित्र श्लोक सरवण किए हैं जो उपरंत बाणी पढ़ी गई है राम कली सद ये बाणी भगत भाई सुंदर जी की बाणी है तीन गुरसिखा की बाणी है भाई सत्ता बलवंडा जी तीसरे भाई सुंदर जी चौथा कई मानते ने भाई मरदाना जी की बाणी पर वो गुरु नानक साहब जी ने भाई मरदाना जी को संबोधन करके श्लोक उच्चारण किए। भाई सुंदर जी ने जो बाणी अगर आप जी ने ध्यान में सरवण की होगी धन गुरु अमरदास पातशाह जो ज्योति जोत समाउन लगते हैं इहदा सारा वेरवा इतिहास विच वर्णन किया गया है। गुरु रामदास सोडी तिलक दिया गुरु शब्द सच निशान जियो गुरु रामदास पातशाह गुरता गुरगद्दी दी जाती है गुरु तेग गुरु अमरदास जी पातशाह जी वालों सतगुरु जी ने इस विच खास उपदेश सिखा सानू बख्शिश करके समझाया है। गुरु महाराज जी ने सारा परिवार सद्या सतगुरु भाणे अपने बह परिवार सदाया हुक्म किया मत।

पद निर्वाणी को बिरला गुरमुख बूझै ओ शब्द समाया भगवाए त्रिपवन सोजी सूझै रहे अतीता परंपराता साच नाम गुण सारिया ओह पूर रहया सर बठाई नानका उर तारिया महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सी जिस दे ही राम मन मार रीजै शब्द सी जे त्रै लोक नाथ पछाणे मन डीग डोल न जाए कत ही अपना फिर जाने मैं

विसर नाहीं दातार, ये बेनती करनी सारे ने, विसर नाहीं दातार अपना नाम दे। गुण गावां दिन रात नानक जावे। जदों बेनती की पंजवें पातशाह अज हुक्मनामा साहब पढ़िया तुसीं की बेनती की, कहते संतां की बेनती, स्वामी नाम महारस दीजै राम, कि सानू साडी टुटी गंढ दिओ, हर जन बना दिओ, जदों मन नाम च समाउणा सिख जे वो रस तक पहुंच जावे। नाम महारस दीजै राम, कहिंदे जदों मिल गए फिर तुसीं अगे भी दान करना, दाना सिर दान नाम दान। कहिंदे नाम दीजै दान कीजे, बिसर ना ही इक खिनो, ते ओ फिर शुरुआत कित्थों होनी। कहिंदे गुण गोपाल उचर रसना, जिहड़ा वाह गुरु कहिंदे नूं गोपाल कहिंदे, कहिंदे उहदे गुण रसना तों बोल के सुनो। गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइए अनदिनो, विसर नाही दातार अपना नाम दियो। गुण गावां दिन रात नानक, ये चा नाल आपां गाया करिए, ये अरदास आपे हो जानी जदों मन नूं जोड़ के तुसीं बोलोगे ना वाहे गुरु, ये सीधी सुनी जांदी, इहदे च मन टिक जांदा। अजे लम्मी अरदास कई वारी नहीं टिकदा, मन फुरने चल पैंदे नाल, पर जदों अखां बंद करके तुसीं बोलदे ना